0: Namaste, good morning, hello, Geetmala listeners. This is the Geetmala show coming to you from WVKR, Independent Radio Station, Vassar College, Poughkeepsie, New York. Tune in at 91.3 FM or on the web at wvkr.org. Phone number here is 845-437-7178. And this is your host, Manisha, along with me, Arun, hosting today's special program.
1: Geetmala ke shrotaon ko, good morning, namaste, vanakam. And aaj ki subah hum ek special program leke aaye hain. और ये प्रोग्राम मनीषा ने जो गीतों की जो माला बनाई है गीत माला के लिए वो बहुत ही यूनिक है. सो मनीषा क्या तो ये गीत माला प्रोग्राम जो है दिस इज डेडिकेटेड टू द पर्सन हु स्टार्टेड दिस प्रोग्राम ऑलमोस्ट 30 इयर्स अगो. सो वील हैव द नाइस लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स. So
0: today's program is again a tribute, a dedication to Padma Hiranandani. Padma, who started the Geetmala program 30 years ago at Vassar College at WVKR, and who brought

0: जी हाँ, झूलेलाल जयंती जो होती है वो चैत्र के महीने में होती है। दे सिंधी हिंदूज दे सेलिब्रेट झूलेलाल और उदयरोलाल का जो फेस्टिवल है, पैट्रन्स उनके सेंट हैं वो झूलेलाल, और ही इज सपोज्ड टू बी इनकारनेशन ऑफ वाटर गॉड वरना। और ये गाना बहुत ही पॉपुलर था लेट 70s और 80s में, और इस गाने का ओरिजिनल जो डिस्क्रिप्शन मैंने देखा है वो लिखा है कि ये अमीर खुसरो ने 13th सेंचुरी में लिखा था, उसके बाद भूले शाह ने 18th सेंचुरी में इसको मॉडिफाई किया था। सो इट वाज पद्मा'स वेरी फेवरेट सॉन्ग विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड इट वाज अ वेरी कैची फास्ट पेस्ड नंबर।
1: हाँ, पद्मा जी हमेशा ये गाना रिक्वेस्ट करती थी जब चेटी चांद होता था। और अगला गाना पेश कर रहे हैं, आई थिंक बिफोर दैट आई लाइक टू शेयर सम ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल आर कम्युनिटी मेंबर्स हु हैव रिस्पॉन्डेड टू द न्यूज ऑफ हर पासिंग अवे, एंड वन विच रियली कैचेस आवर हार्ट और पुल्स एट आवर हार्ट स्ट्रिंग्स इज द नोट बाय कमलेश देसाई जी, कमलेश जी। And Kamlesh ji rightfully posted that her voice may have fallen silent, but the music she brought to the Hudson Valley will never fade. The memories she shared, the rhythms she carried, and the love for Indian music she nurtured will continue to float through the airwaves, a beautiful, enduring presence among us. So thank you, Kamlesh bhai, for this beautiful sentiment. And let's enjoy Padma's legacy, her show, the Geetmala show. And let's hear one of her other favorite songs, which she has recommended, which she had requested, rather, during my last 5 years running this show. And that's from the movie Aradhana. And this is Mere Sapno Ki Rani. So let's listen to this nice song.

0: जी हाँ, बड़ा ही सोलफुल गाना था ये। और पद्मा जी के बारे में थोड़ी और स्टोरी शेयर करूँगा। जब यहाँ मूव हुई, उन्होंने काफ़ी सर्जरीज कराई अपनी जो लिमिटेशंस थी जो उनकी पूरी करने के लिए, फिर लैरी से मिली किसी सोशल वर्क के थ्रू, एंड दैट्स अनदर स्टोरी, यू नो। फिर वो फिर कभी बात करेंगे। वो पहलती जब पहले वो लैरी के साथ उनकी शादी हुई, उसके बाद जो न्यूयॉर्क सिटी में रहती थी मैनहैटन में, हर संडे जो है वो हर संडे को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिंदी गानों का प्रोग्राम आता था, वो सुनती थी हर संडे के संडे। देन इन 1997 शी मूव टू ऑरेंज काउंटी एंड शी मेट सम पीपल एंड सो शी गॉट इंट्रोड्यूस टू द वेसर कॉलेज रेडियो, यू नो, रेडियो स्टेशन। इनिशियली उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर वो लिखा उन्होंने एक इंटरव्यू में कि कुछ ही दिनों बाद उनका फ़ोन आ गया, नहीं एक अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ पे वेसर कॉलेज रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम शुरू किया। Then rest is history, as we all know.
1: And talking about co-host, I was thinking I may forget somebody, but I did forget Lakshmanji. Lakshman Parashar also was a host. And we got a call from Jerry, who was a host with Padma, and through Vish. I think Vish was one of Dutchess County resident who listened to Padma's show and got involved with it, and would call, as per Padma, would call her every program. And share with her the news about Indian cinema and Hindi films. And Padma would always remember Vish fondly. And Jerry would like, he called and would like to share with our listeners that he's so very proud to know Padma and of the opportunity she gave him. And he's proud to be part of the Geetmala family. And talking about Jerry, Jerry, we do wish you a very happy birthday.
0: Yeah, Jerry, you know, I mean, he's not an Indian, but he, I think he got connected with Padma kyunki wo, I think some of the previous listeners, or like Vish and all the other listeners, they used to work for IBM, and Jerry bhi IBM mein kaam karta tha, plus he was a part-time DJ, I think. That's how he got involved with Geetmala and hosted shows several times and has contributed towards during Pledge Drive as well.
1: To agla gana we would like to listen is again a soulful melody, ek pyar ka nagma hai. Again, one of Padma's favorite songs. And thank you, friends, for messaging and calling and appreciating the songs. And we all collectively are paying a tribute to Padma Bain.

0: जी हाँ, पद्मा बिना, पद्मा बेन के बिना ये शो बहुत ही अधूरा अधूरा सा लगेगा, बट थैंक यू पद्मा बेन फॉर गिविंग अस दिस शो. वी कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल शो, आवर एंटायर कम्युनिटी, एंड वी होप टू कैरी दिस योर लेगेसी फॉरवर्ड फॉर मैनी मैनी ईयर्स टू कम.
1: जी हाँ, जो जो पद्मा का जो संगीत के जो उनकी रुचि थी, बचपन से ही वो गीतमाला सुनती थी. फिर एक और इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी कि जब वो न्यूयॉर्क सिटी में रहती थी मैनहैटन में लैरी के साथ शादी के बाद, तो वो हर संडे कोलम्बिया से हिंदी गानों का, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से हिंदी गानों का प्रोग्राम सुनती थी. उसके बाद वो लेट 90s में शी मूव टू डच ऑरेंज काउंटी, देन शी गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट दिस वंडरफुल शो.
0: And Padma Bain was also very, she would get a little upset when we said, oh, Padma Bain, we don't have a host for this Saturday. It's difficult to find somebody to host the show. And she would say, I would come every Saturday driving across the river to do this show without fail, rain or shine, I would do the show. And that's so true. Her commitment to the show was amazing. So listeners, let's celebrate her and enjoy a couple more of her favorite songs. As I said before, she loved old and new songs. She kept in touch with the latest pop songs, latest Hindi music. And one of her newer favorite singers was S.P. Balasubramaniam, great singer. And she would love playing the songs from his movie Sajan. बहुत प्यार करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ पद्मास फेवरेट सॉन्ग, संग बाय एस पी बालसुब्रमण्यम.